0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: एक यूथ जस्टिस वर्कर के रूप में आप हिरासत में लिए गए युवाओं की मदद करेंगे। यह एक सुरक्षित नौकरी है जिसमें वेतनीय प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर आप समर्थन देने वाली टीम के साथ एक फायदेमंद करियर की खोज में हैं, तो यूथ जस्टिस करियर सर्च करें। ऑथराइज्ड बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट, मेलबोर्न।
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: क्या आपको लगता है कि खसरा सिर्फ बच्चों की हल्की बीमारी है? गलत धारणा। क्या आपको लगता है कि अब वैक्सीन की जरूरत नहीं रही? यह भी गलत धारणा है। मेलबर्न में खसरा फिर से फैल रहा है और यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। यह बहुत तेजी से फैलता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। सच्चाई यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज मजबूत सुरक्षा प्रदान करती हैं, और यह भी सच है कि यह वैक्सीन सुरक्षित, प्रभावी और आसानी से उपलब्ध है। अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीकाकरण करवाइए।
0: वेस्टर्न पब्लिक हेल्थ यूनिट, प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ।
4: मेलबर्न म्यूजियम की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन। मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें। बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
5: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार, मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
4: अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद है तो इसे ऑन एयर बनाए रखने में हमारी मदद करें। यह कार्यक्रम स्वयं सेवकों के द्वारा आपके लिए बनाया गया है। आपकी भाषा यहाँ जीवित है, आपका समुदाय यहाँ बसता है। सिर्फ सुनिए ही नहीं, इसका हिस्सा भी बनिए। आज ही अपनी सदस्यता लें या उसका नवीनीकरण करें। $11 कंसेशन या $16 फुल। 3ZZZ.com.au पर जाएं या हमें कॉल करें 9415-1928। जानते हैं कि मेलबर्न में खसरा मतलब मीजल्स फिर से फैल रहा है और मामले बढ़ रहे हैं। यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और समुदाय में बहुत तेजी से फैल सकता है। अच्छी खबर यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज आपको और आपके परिवार को मजबूत सुरक्षा देती है। आप अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीका लगवा सकते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा मतलब मजबूत समुदाय।
0: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
4: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट। यहाँ देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद। रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है। टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
5: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार, मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
6: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा।

0: नमस्कार मेलबर्न, आज के कार्यक्रम गीतांजलि में आपका स्वागत है, जो कि लेकर आते हैं हम प्रत्येक शनिवार की शाम रात 9 से 10 बजे के बीच में।
1: और आज का कार्यक्रम पेश कर रहे हैं हम, यानी मैं दीप्तिमान
0: और मैं शारदा।
1: और शारदा, आज के कार्यक्रम की शुरुआत आपने बहुत ही अच्छी पेशकश से की। आबिदा परवीन जी की आवाज़ और उसकी वर्डिंग इतनी अच्छी थी, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में एक घंटे की यात्रा होगी हमारी गीतांजलि की। तो आज तो शारदा मन काफ़ी व्यथित है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक विचार मन में बार बार आ रहा है कि भारत की पुत्रियां सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसी ऐसी पुत्रियां जो कि अंतरिक्ष की चीज़ों को छूती हैं और भारत का नाम रोशन करती हैं, वहीं दूसरी तरफ
0: क्या हो रहा है हमारे देश में कि निर्भया कांड 1, कांड 2 और इस तरह के कितने केसेस हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, मतलब वो भी हमारी भारत की पुत्रियां हैं जिनके साथ ऐसे अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, तो इससे मन काफ़ी दुखी है।
0: एक तरफ तो ऊंचाइयां छू रही हैं लड़कियां, और हम चाहते भी यही हैं कि वो हमसे, हमारी बेटियां बच्चों के, बेटों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और आगे बढ़ें, और वहीं दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार।
1: जी, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है हमारे कल्चर में या हमारी वे ऑफ लाइफ में भारत में, जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसको हमको बहुत ध्यान देना होगा और इस पर विचार करना होगा और इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्शन इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए मूल से। तो चलिए, ये एक भाव था और हम इस अवसर पर, इस मौके पर हम चाहेंगे कि निर्भया जैसी जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी बच्चियाँ हैं हमारी, उनको हम देते हैं श्रद्धांजलि अपनी पहले, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गीतांजलि कार्यक्रम मित्रों, आज हम एक थीम लेकर आए हैं शारदा, तो बताते हैं थीम भी क्या है आज की।
0: आज हम गज़ल सुनाएंगे अपने श्रोताओं को।

0: श्रोताओं, ये जो गजल थी फिल्म उमराव जान से ली गई थी और इसको गाया था तलत अजीज ने।
1: अच्छा, तो श्रोताओं को ये बताते हैं कि भाई आज का जो हमारी थीम है गज़ल, वो गज़ल का जो जॉनर है वो भी अपने आप में यूनिक है और ये भारत में कहीं से आया है ना।
0: बिल्कुल, गज़ल की शुरुआत मतलब ओरिजिन ऑफ गज़ल जो है अरब कंट्री।
1: अच्छा, अरेबिक।
0: अरेबिक कंट्री से।
1: जी, तो बताइए गज़ल का उद्भव हुआ अरब देशों में और वहाँ से ये मतलब लुढ़कते लुढ़कते भारत पहुँच गई। मतलब सारे कौन कौन से वो पहाड़ पड़ते हैं रास्ते में ना,
2: कराकोरम,
1: हिमालय और अजरबैजान और जितने हैं मतलब कंट्रीज, वहाँ से सोचिए मतलब ये भी जो संस्कृति की धाराएं हैं ये कितनी स्ट्रांग होती हैं कि देश काल सबके परे और सबको चीरती हुई ये भारत पहुँच गई।
0: तो 7वीं शताब्दी में इसका उद्भव हुआ था। अच्छा, मतलब ओरिजिन है इसका और 12वीं सदी में ये पहुंची है
1: भारत। मतलब 500 साल लग गए।
0: वाह, आपने बताया इतने पहाड़ों के नाम तो उनको क्रॉस करते करते तो
1: जी हाँ, नहीं ये एक्चुअली ये हमारी जो जो ह्यूमन बीइंग्स की हिस्ट्री है उसमें कल्चरल बैरियर्स भी आते हैं और इन सबको क्रॉस करना ये इट टेक सेंचुरीज है ना। उम्र जलवों में क्या होता है, उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं ना। तो यही है, पूरी पूरी उम्र लग जाती है कभी कभी मित्रों। तो चलिए ये गज़ल की कहानी हम सुनाएंगे आपको और आपको गज़लें भी सुनाएंगे जैसे कि हमने शुरू कर दिया है। तो शारदा एक और
0: सुनाइए। तो एक और गज़ल सुनाइए आप।

0: श्रोता, ये जो गज़ल ली गई थी वो किसी एल्बम से थी और इसको गाया था नूरजहां ने, नूरजहां जी की एल्बम थी मतलब जी।
1: और ये आपने गेस कर लिया होगा आवाज़ से मित्रों कि ये गज़ल वन ऑफ द ओल्डेस्ट गज़ल्स जो हमको मिली है हमारे संकलन से, तो हमने आपके सामने पेश की और हमको आशा है कि आपको ये अच्छी लग रही होगी गज़लें जो हम सुना रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि विभिन्न तरह की गज़लें आपको सुनाएं। तो शायद गज़लों के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि ये गज़ल जो है अरब देशों से होती हुई भारत आई, और लेकिन इसका जो ओरिजिन था ये सूफी ओरिजिन था गज़ल का ना,
0: गज़ल की शुरुआत मतलब सूफियाना जी मतलब तरीके से हुई थी,
1: अध्यात्म की है ना, आध्यात्मिक प्रेम की जो होती थी ना एक्सप्रेशन,
0: मतलब भगवान से प्रेम का जो इजहार है ना,
1: तो गज़ल के जरिए होता था। और इस समय जो सूफी दरवेश थे उस समय के और सूफी गज़ल लिखने वाले लोग, उसमें दो तीन लोग बड़े फेमस हुए थे, रूमी और हाफिज़ है ना, ये दोनों लोग, इनके नाम कई जगह आते हैं कि इन लोगों ने सूफी गज़लें लिखी थी। तो स्टार्ट तो हुआ था अध्यात्म से, लेकिन धीरे धीरे वो फिर श्रृंगार रस की ओर बढ़ा और उसमें विरह रस और हर तरह की गज़लें फिर बनने लगी।
0: मतलब जो भगवान से प्रेम था जी, वो मनुष्य से प्रेम की तरह
1: जी बिल्कुल, वो ट्रांसफॉर्म हो गया थोड़ा सा उसकी परिणति जो है नेचुरली थोड़ा सा और वो एक और रूप में आ गई, लेकिन प्रेम प्रेम ही रहा। तो गज़ल जो है उसका जो उसकी जो रूह है वो प्रेम ही है मित्रों, चाहे वो अध्यात्म भगवान के लिए या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए। तो श्रद्धा, ये थीम आगे बढ़ रही है गीतांजलि कार्यक्रम, और हमें आशा है कि सबको पसंद आ रहा होगा कार्यक्रम।
0: तो एक और गज़ल सुनते हैं।

0: श्रोताओं, ये जो गजल थी फिल्म अर्थ से लिया गया था और इसको गाया था गजल सम्राट जगजीत सिंह ने।
1: ये है रेडियो 3ZZZ
0: कार्यक्रम गीतांजलि,
1: जिसको लेकर आए हैं आपके लिए हम,
0: यानी मैं शारदा
1: और मैं दीप्तिमान। श्रोताओं, आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने बीच में श्री रामदयाल जी का, जो कि भारत से हाल ही में आए हैं। वो एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं और साथ में ही एक बहुत ही अच्छे कवि भी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं।
2: सबसे पहले तो मैं दीप्तिमान सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस चीज के लिए और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके समक्ष कुछ बोल पाऊँ। तो और जहाँ तक बात रही मेरी भारत से मेलबर्न तक की यात्रा की, तो मैं बेसिकली गोरखपुर का रहने वाला हूँ, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, और पांच बहनों का अकेला भाई हूँ। तो जाहिर सी बात है कि पिताजी ने जिस तरह से बेटियों को पाला, उसी प्रेम और उसी सुरक्षा के साथ मुझे भी पाला। तो सफर काफी मुश्किल रहा, क्योंकि इकलौता होने के नाते माँ बाप की भी जिम्मेदारियां थी और परिवार में शिष्टाचार और संस्कार इन सबको आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारियां थी। परंतु बड़ों के आशीर्वाद और माँ बाप माता पिता के प्रयत्न से मैं यहाँ तक पहुंचा। तो मेरा तो मुझे पता नहीं कि कितना इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता और मेरी पत्नी का सहयोग इसमें सबसे ज्यादा है कि मैं आज यहाँ आपके समक्ष बात कर पा रहा हूँ, आपसे मिल पाया।
1: वाह रामदयाल जी, आपका नाम ही बिल्कुल, आप स्वनाम धन्य हैं, आपके आपके नाम में भगवान राम है और दया और करुणा भरी है। तो आप हम ऐसे माता पिता को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने इतना सुंदर नाम रखा आपका, और हम वास्तव में आज बहुत ही आह्लादित हैं आप जैसे व्यक्तित्व से मिलकर कि आपने अपनी यात्रा इतनी सुमधुर ढंग से तय की भारत से मेलबर्न आने की। तो आप अपना कृपया बताएं जल्दी से कि आपका यहाँ कार्य क्षेत्र क्या है और आप किस किस विषय में कार्य कर रहे हैं।
2: तो मैंने बेसिकली जब मेरी पीएचडी मटेरियल्स इंजीनियरिंग में है, जिसमें मैंने काम किया था कि ऐसा कंपोजिट डेवलप किया जाए, ऐसा मटेरियल डेवलप किया जाए जो बैलिस्टिक एप्लीकेशन में काम आए। तो बैलिस्टिक एप्लीकेशन का मतलब ये कि जो इसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स या इन सब चीजों में काम आए। तो मेरा उसमें पीएचडी था। तो उसके बाद जब मैंने अपना पीएचडी के बाद रिसर्च शुरू किया, तो वो पूरी तरह से आधारित है इस बात के ऊपर कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैसे ऐसा कंपोजिट दिया जाए, ऐसा मटेरियल दिया जाए जो लो कॉस्ट हो। और क्योंकि जैसे जैसे हम प्रगति की तरफ जा रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कॉस्ट और मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। तो इस समय मेरा पूरा रिसर्च इसी बात के ऊपर आधारित है कि हम किस प्रकार से इनका वेट और इनका कॉस्ट कम कर सके। तो मैं उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ।
1: आपका क्षेत्र बहुत ही रेलिवेंट है इस समय, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरे वर्ल्ड में आने वाली है, बल्कि काफी लोगों पे आ भी गई है। चलिए, ये तो बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे मतलब फ्रंटियर साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। तो ये बताएं कि अब हम लोग बढ़ते हैं कविता के क्षेत्र में। तो चलिए, आप हम अपने श्रोताओं को अधिक देर इंतज़ार न कराते हुए चलिए सुनते हैं कविताएं कुछ आपसे, जो आपने आपने किताब भी लिखी है हमने सुना है। तो चलिए उस किताब से या आपके अपनी संकलन से कुछ कविताएँ सुनाएँ। देखिए, इस समय सभी लोग काफ़ी दुखी हैं। निर्भया का जो समय है उसको देखते हुए, तो हो सके तो इस संदर्भ में कुछ सुनाएं।
2: जी बिल्कुल, अभी जो हाथरस की घटना हुई है वो काफी प्रेरणादायक है और हर किसी के लिए काफी प्रेरणा काफी दुखद है एक्चुअली, और लोगों को इस बात से प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं क्यों हमारे ही प्रदेश में घटता है और इस तरह की चीजों को बदलाव की जरूरत है। तो इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, क्योंकि महिलाएं अक्सर समाज और संस्कार के जाल में फंस कर करके रह जाती हैं और उनको बहुत आसानी से बदनाम किया जा सकता है
1: जी।
2: हमारे शहर में और आपके शहर में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं
1: जी।
2: तो मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी थी
1: जी,
2: कि अफवाहों की मोटी परत है औरत, जिंदगी के समंदर में पत्थरों पर लहरों की तरह टूटती है औरत। ईद के चांद की तरह खुशियां आती हैं उसकी जिंदगी में, पर आसमां में चमकते सितारों की तरह मुस्कुराती है औरत। उसके लिए मोहब्बत खुदा की इबादत की तरह है, समाज की चंद गलतियों की वजह से अक्सर लूट जाती है औरत। अफवाहों की एक मोटी परत है औरत, कभी जलती है कभी जला दी जाती है औरत, कभी जलती है कभी जला दी जाती है औरत। वक्त से आगे निकल आई है ये दुनिया, पर आज भी सदियों पुराने किस्सों में जीती है औरत। अफवाहों की एक मोटी परत है औरत, जिंदगी के समंदर में पत्थरों पर लहरों की तरह टूटती है औरत। तो ये मेरा एक संकलन था जो महिलाओं को समर्पित था, और मैं प्रयास था कि कभी कुछ ऐसा कह पाऊं कि जो किसी एक मनुष्य की या किसी व्यक्ति की भी आत्मा को झकझोर सके तो मेरे लिए काफी होगा।
1: अफवाहों का आपने इतना सुंदर उपयोग, उतना सुंदर आपने सदुपयोग किया इस शब्द का, अफवाहों का, अफवाहों की परत, मतलब बहुत ही सुंदर भाव है कि लांछन जो है महिलाओं पर तुरंत लग जाते हैं, हम लोग सोचते भी नहीं लगाने के पहले, जबकि अपने अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखें तो लांछनों की मतलब भरमार लग जाए, लेकिन ये हमारा जो है अपना पूर्वाग्रह है, बायस है। बहुत ही अच्छा भाव, बहुत सुंदर भाव। इसी क्रम में कुछ और रामदयाल जी संभव तो सुनाएं।
2: इसी क्रम में मैंने लिखा था कि एक लड़की अपने माँ से, जब उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम जल्दी घर आओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो एक पीड़ा, एक स्त्री और एक बेटी के हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उस पीड़ा को कहते हुए एक बेटी अपने माँ से कहती है कि मेरे लरजते कांपते जिस्म पर, मेरे लरजते कांपते जिस्म पर डर बेबसी हवस के कितने धब्बे हैं माँ। इस नंगे समाज में मर्दों की निगाहें हर रोज मुझे चीरती हैं, फिर भी मुझे कपड़ों के लिए टोकती हो माँ। मर्दों से भरी इस दुनिया में मेरे लिए रास्ते ही कितने हैं, मर्दों से भरी इस दुनिया में मेरे लिए रास्ते ही कितने हैं, फिर भी मुझे जल्दी घर आने को कहती हो माँ। मैं लड़की हूँ, चौखट से जंग मेरी जिंदगी है, मैं लड़की हूँ, चौखट से जंग मेरी जिंदगी है, बंद दरवाजे बंद खिड़कियां मेरी किस्मत, फिर भी मुझे जिंदा रखती हो माँ। क्यों मुझे रेगिस्तान के जर्रे के, क्यों मुझे रेगिस्तान की जर्रे में बर्फ के टुकड़ों से छुपाती हो माँ। मेरे जिस्म की कैफियत को क्यों खोखले अंधेरों से ढकती हो माँ। मैं लड़की हूँ ये जानकर भी मुझे क्यों जिंदा रखती हो माँ, ये जानकर भी मुझे क्यों जिंदा रखती हो माँ।
1: बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही दर्दनाक।
2: मैंने ये मैंने महसूस भी किया है, क्योंकि घर में सबसे छोटा होने के नाते अक्सर ये कहा जाता था कि मेरी बहनों को या मेरे आसपास के लोगों को बच्चियों को कहा जाता था कि आप घर से बाहर मत निकलिए, और घर के बाहर जाइए तो आप इस तरह से पहन के निकलिए या वैसे पहन के निकलिए, और वो बंदिशें कभी किसी लड़के या किसी पुरुष के साथ नहीं था। तो ये बहुत आहत करती थी चीजें कि वो चीजें, वो स्वतंत्रता क्यों नहीं है हमारे यहाँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, देख के खुशी होती कि लड़का और लड़की बराबर एक साथ चलते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा अभी भी संभव नहीं हो पाया है।
1: जी बिल्कुल, अभी बहुत सारे मायनों में हम लोग जहाँ से हमने यात्रा अपनी शुरू की थी भारत में, जब भारत में बहुत पहले पर्दा प्रथा नहीं थी और शास्त्रार्थ होते थे, है ना, महिलाओं, नारी और नर के बीच में, मतलब लोगों के बीच में होते थे शास्त्रार्थ ओपन में, उस समय से हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं लगता है, और वहाँ यात्रा हम लोग को एक तरह से पीछे जाना पड़ेगा आगे आने के लिए। तो जहाँ से हमने शुरू किया था संस्कृति का और सभी का उद्भव जहाँ से हुआ था भारत का, लगता है वहीं हमको वापस जाना पड़ेगा उन चीज़ों को पाने के लिए। तो बहुत लंबी यात्रा है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा आगे जाने के लिए, और आपसे आज बात करके ये नए नए भाव फिर से मन में उपज रहे हैं, और बहुत ही आपने एक नई सी सोच पेश की है, और रामदयाल जी ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं, और आप एक साइंटिस्ट हैं और एक कवि हैं, ये आपसे हम यही आग्रह करते हैं कि कृपया अपनी कविता को सदैव जिंदा रखिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह इलेक्ट्रिफाई करते रहिए। और चलिए किसी एक और भाव में, अब ये लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो समय भी और दिन भी बड़े हो रहे हैं और उत्साह लोगों में आ रहा है, तो चलिए लोगों को उत्साहित करने के लिए कोई और कविता अगर आप पेश कर सकें तो आनंद आ जाएगा, या
2: जी बिल्कुल
1: किसी और भाव में।
2: जी, ये लॉकडाउन काफी, जैसे जो परिवार में जो पति पत्नी है या जो ऐसे लोग हैं उनके लिए काफी काफी मधुर रहा, और लोग सब ने काफी अच्छा समय भी व्यतीत किया। तो ऐसे ही एक प्रेम प्रसंग मैंने लिखा था कि मेरे पहलू में बैठकर उसके रो देने का ख्याल कितना अच्छा था, मेरे पहलू में बैठकर उसके रो देने का ख्याल कितना अच्छा था, बहाने से ही सही उसे छू लेने का एहसास कितना अच्छा था। आरजू थी उसके आंखों के समंदर में उतर जाने की, आरजू थी उसके आंखों के समंदर में उतर जाने की, हया की बंदिशों में पल के झुका लेने का वो अंदाज कितना अच्छा था, बहाने से ही सही उसे छू लेने का एहसास कितना अच्छा था। मेरे जज्बातों के अफसाने में रंगीन ख्वाबों से भरा, मेरे जज्बातों के अफसाने में रंगीन कितना अच्छा था, मेरे जज्बातों के अफसाने में रंगीन ख्वाबों से भरा, मेरे जज्बातों के

0: कि लगता है कि ये क्रम चलता रहे, लेकिन कार्यक्रम हमारा गीतांजलि जो है ये समय की सीमाएं हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके साथ और वक्त बिताएंगे और आपके जो भावों का ये समंदर है और भावों का जो इंद्रधनुष है उसके हमने कुछ ही रंग आज देखे, और रंग और भाव और जितनी धाराएं हैं उनसे हम फिर परिचय कराएंगे अपने श्रोताओं का अपने कार्यक्रम गीतांजलि में फिर कभी आगे किसी और दिन। और आज हम देते हैं आपका धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आप अपने विचारों से ऐसा कंपोजिट मटेरियल बनाएं, ऐसा कवच बने हमारी नारियों के लिए कि उनकी सोच का कवच कंपोजिट मटेरियल ऐसा बने कि वो जीवन भर बिल्कुल उस कवच से सुरक्षित रहें और एक ऐसा जीवन जिए जिसकी कि आपने कल्पना की है कि स्वच्छंद उन्मुक्त और हंसता खेलता जीवन नारियों के लिए और पुरुषों के लिए समान रूप से रहे। तो हम ऐसी आशा करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी परिणति खूब अच्छे से हो और उसका सदुपयोग ये पूरा विश्व करे और आपका नाम रोशन हो। रामदयाल जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बताएं।
1: दीप्तिमान सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत कर सकूं। और दूसरा मेरा भाव यही रहेगा कि भगवान करे, हम लोग कहते हैं हमेशा अपने प्रदेश में कि भगवान करे आपकी जबान पे सरस्वती हो, कि महिलाओं को ऐसा कवच मिले कि वो अपने उनको अपनी सुरक्षा के लिए किसी और की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े और वो इस मकाम पर पहुंचे कि जहाँ पुरुष और महिला दोनों बराबर हो। तो इसी उम्मीद और इसी प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद रामदयाल जी, आपके समय का और आपके विचारों का। हम आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्कार।

0: ये है रेडियो 3ZZZ
1: कार्यक्रम गीतांजलि,
0: जिसको लेकर आए हैं आपके लिए हम,
1: यानी मैं शारदा
0: और मैं दीप्तिमान।
2: मित्रों, ये कार्यक्रम गीतांजलि आपके सहयोग से चलता है और आपकी हर एक, आप में से सभी लोगों की मेंबरशिप वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है इस 3ZZZ इंडियन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। और आपको मालूम ही है कि जो हमारी एनुअल मेंबरशिप फ़ी है वो $16 है और सीनियर्स के लिए मात्र $11। तो कृपया अपना सहयोग बनाए रखें और इस 3ZZZ गीतांजलि परिवार को और आगे बढ़ाएं और बड़ा करें अपनी मेंबरशिप के ज़रिए। और मित्रों, हाँ, एक चीज़ और, इस वीकेंड पर जो डेलाइट सेविंग है वो ख़त्म होने वाली है, अर्थात 4 तारीख मंडे की सुबह जब घड़ी की सुइयां 2 AM बजाएंगी, तो उनको आप कृपया 1 घंटे और आगे कर दें, 2 AM becomes 3 AM। तो कृपया ध्यान रखें कि डेलाइट सेविंग जो है वो फिर से इफेक्ट में आ रही है 4 अक्टूबर मंडे।
1: श्रोताओं, ये जो गज़ल थी फिल्म निकाह से ली गई थी और इसको गाया था गुलाम अली जी ने। आपको गुलाम अली जी के बारे में बता दें कि वो बड़े गुलाम अली जी के शिष्य थे और वो जगदीश सिंह के बहुत ही अच्छे मित्र थे। और गुलाम अली जी 13 साल की उम्र से ही रेडियो पाकिस्तान में गाना शुरू कर दिया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, 13।
2: तो मित्रों, ये है कार्यक्रम गीतांजलि जो कि आगे बढ़ रहा है आपके सहयोग से। और हम आज की थीम हमने गज़ल रखी थी और हम आशा कर रहे हैं कि हम जो गज़लों की का जो ये बुके पेश कर रहे हैं आपको, उसमें आपको विभिन्न फूलों की खुशबू आ रही होगी।
1: और एक और गजल सुनाइए।

0: श्रोताओं, ये गजल ली गई थी फिल्म मासूम से और इसको गाया था भूपेंद्र सिंह ने और सुरेश वाडेकर जी ने।
1: जी मित्रों, तो आज की थीम रखी थी मित्रों गजल हमने, और गजल का ग्रामर के बारे में बता दें मित्रों कि जो गजल का जो पहला पैराग्राफ होता है उसको बोलते हैं मतला, और फिर उसके बाद आता है रदीफ या काफिया, है ना, और लास्ट में आता है मक्ता।
0: और एंड पॉइंट है, फिनिश होने वाला है
1: जी, फ्रेश पॉइंट है। और मक्ता के अंदर जो है कवि लोग, जो गजल के लेखक हैं, वो अपना तखल्लुस डाल देते हैं, यानी निक नेम। तो अगर आपको ये देखना है कि गजल किसने लिखी है, तो मतला, रदीफ, काफिया को देखते हुए अंत में आ जाएं मक्ता पे, और वहाँ पे उनका नाम होगा। तो ये हल्का सा ग्रामर के बारे में बताया। तो अब मित्रों टाइम आ गया है अब आपसे विदा लेने का, कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका है, और हम आशा करते हैं कि जो हमारी आज की रिकरिंग थीम थी नारी शक्ति, नारी एम्पावरमेंट और नारी इक्वलिटी, इस पे हम ध्यान दें और ध्यानपूर्वक पॉजिटिव एक्शन भी लें, क्योंकि अगर थॉट्स आएंगे तो एक्शन भी होगा। तो श्रद्धा आप बताएं इसके बारे में।
0: यस, थॉट आएंगे तो एक्शन भी होगा। तो हम बचपन से ही बच्चों में ऐसा उनका ग्रूमिंग करें कि उनको पता ही ना चले कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो शुरू से ही जब उनको रहेगा कि हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो शायद बड़े होकर के भी यही बात बनी रहेगी, और हर एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो सम्मान की भावना कि जो भी आपके साथ है या जो भी आपके आसपास है, सबका सम्मान करें। तो ये बात ही ना रहे कि हम खाली नारी का सम्मान करें, नहीं, हम सबका सम्मान करें। तो ये बात ही नहीं आएगी कि दो अलग चीज़ें हैं, है ना।
1: एक्चुअली वो अलग है ही नहीं,
0: है ही नहीं,
1: क्योंकि अर्ध दारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल
0: ह्यूमन है।
1: जी मित्रों, चलिए मित्रों हम लेते हैं आपसे विदा, और आपसे मिलेंगे गीतांजलि के किसी और मोड़ पर, किसी और कोने पे, लाइफ में किसी और चौराहे पे। धन्यवाद,
0: नमस्कार मेलबर्न।